0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे

0: ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट द एक्ट व्हिच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट

0: தொடர்வது ஆஜ் சவேரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
1: Good morning, Vishal, and to our listeners, good morning, good day, everybody. A very warm welcome to all our listeners tuned to Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz. Well, today, it's the first day of the month, 1st of July, and we are beginning with so many aspirations and positivity and optimism. And on that note, we are beginning today's program. We'll give you the latest national, international news. There will be metro updates also. And our last section, it will involve a lot of discussion because we have musicians that we're going to talk about today. So many musicians and other personalities as well. So listeners, this is our way of telling you, stay tuned with us till the very end of the program for roughly half an hour now. So let's begin with the headlines.
0: जी शगुन, प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास

0: मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce.
0: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने सीमा शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की थी। ये छूट घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी। छूट के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की सूची पहले की तरह ही है।
1: The house-to-house data verification phase of the census begins across Keralam today as part of the nationwide census exercise. Now let's find out more details from our correspondent.
2: The field verification follows the completion of the self-enumeration process, which ended at midnight yesterday. During the self-enumeration phase, households were able to digitally submit details of family members through the census portal. Residents who completed the online registration are required to provide the self-enumeration identification number to the census enumerator during the household visit. The enumerator will verify whether the information submitted online matches the existing records. If any mistakes are found or if a household has not completed self-enumeration, the enumerator will collect the required information afresh during the visit.
0: जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: Now let's tell you about Goa University's 42nd Foundation Day on 30th June yesterday with Padma Vibhushan Anil Kakodkar delivering the Foundation Day lecture on higher education and national development. So addressing the gathering, Dr. Kakodkar said that if India is to emerge as a global leader, it must create skilled manpower across diverse sectors. He stressed the need to strengthen education, promote industry-oriented research, and ensure the effective implementation of the national education policy beyond formal adoption. He said education should not only impart knowledge, but also nurture human values and ethics to build a capable and responsible generation. Now, we'll move on to sports.
0: जी, खेल खबरों की बात करें शगुन, तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में और चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा।
1: In football, Kylian Mbappe further enhanced his FIFA World Cup legacy to lead France to a comfortable win against Sweden. So in the round of 32 clash, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, US to advance to the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night.

0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब कुछ खबरें महानगरों से, मेट्रो सिटीज से। और सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2026 आज से लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹30,000 तक का खरीद प्रोत्साहन जारी रखा गया है। इसके साथ पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर ₹10,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की 1 अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना के अंतर्गत दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना और दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, ट्रस्ट, संस्थाएं और इच्छुक नागरिक स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सहयोगी स्मारक मित्र कहलाएंगे, जो स्मारक पर साफ सफाई, सुरक्षा, लाइट एंड साउंड जैसी पर्यटक सुविधाओं के संचालन का पूरा खर्चा भी स्वयं वहन करेंगे।
1: We will now head to Chennai, विशाल।
0: जी।
1: A special court in Chennai has sentenced V. Pichai, former commissioner of Salem Municipal Corporation, to 3 years of rigorous imprisonment and imposed a penalty of ₹5,000 in a disproportionate assets case. The Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Chennai Division registered amassing assets beyond his known sources of income during the period from January 1, 1997 to December 31, 2001. Another update from Chennai only. Department of Telecommunications Tamil Nadu License Service Area has achieved a significant milestone in strengthening telecom compliance and consumer protection. During June 2026, nearly 327 BTS audits and 28,000 customer acquisition form audits were conducted. Through the Chakshu module, citizens reported suspected fraudulent and spam communications, enabling coordinated action with telecom service providers.
0: और अब महाराष्ट्र और मुंबई की खबरों का जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT शुरू करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन मंत्री आशीष शेलार ने कल विधान परिषद में बताया कि ये कदम वार्षिक भर्तियों में अपेक्षित वृद्धि के कारण उठाया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अंकों का मानकीकरण किया जाएगा। प्रख्यात फिल्म और रंगमंच हस्ती विजया मेहता का कल रात मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रयोगात्मक मराठी रंगमंच की अग्रदूतों में से एक थी। हमारी मुंबई संवाददाता से ये रिपोर्ट।
2: विजया मेहता, जिन्हें प्यार से बाई कहा जाता था, उन्होंने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हमीदाबाई चिकोठी, महानिर्वाण, पुरुष, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने राव साहेब, पेस्टन जी, शाकुंतलम और दूरदर्शन धारावाहिक स्मृति चित्रे जैसी फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नाउ लेट्स हेड टू बेंगलुरु। Greater Bengaluru Development Minister Krishna B. Gowda has directed officials to prepare a comprehensive action plan to achieve 100% animal birth control coverage for stray dogs in Bengaluru within the next 3 years. So, reviewing animal husbandry and urban plantation initiatives under the Greater Bengaluru Authority, the minister instructed officials to double the annual number of the animal birth control surgeries. Another update from Bengaluru. Karnataka's Visveswarya Technical University has created a new

0: record by declaring the results of the sixth semester BE and BTech examinations within 5 minutes of the completion of the exam. The university said the evaluation process was completed 21 days earlier than in the previous years, with an overall pass percentage of 76.84. Another update. The Karnataka School Education and Literacy Department has notified the eligibility criteria for the recruitment of computer science teachers in government schools, paving the way for filling 2,500 newly created posts for classes 1 to 8.
1: और अब समाचार कोलकाता से। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के उपयुक्त वन क्षेत्रों में बाघों को पुनर्स्थापित करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय वर्गीकरण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। ZSI देश के प्रमुख पशु विविधता अनुसंधान संस्थानों में से एक है। देश में संरक्षण के क्षेत्र में मिली सफलताओं का उल्लेख करते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कोलकाता लंबे समय से वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र रहा है और ZSI ने एक सदी से अधिक समय से पशु वर्गीकरण, जैव विविधता अन्वेषण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: Hyderabad now. Let's focus on Hyderabad. Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, stated that stronger partnerships between agricultural research and industry will drive India's next phase of economic growth. Speaking at the CSIR, Indian Institute of Chemical Technology in Hyderabad, he emphasized that the country's scientific priorities have expanded from crop improvement to transforming agricultural waste into valuable, market-ready products. So these were the Metro City updates.
1: मेट्रो शहरों की खबरों के बाद अब बात मौसम की और शगुन दिल्ली NCR के लोगों के लिए तो आज का दिन काफ़ी राहत लेकर के आया है। और दिल्ली में आज मौसम की बात करें तो बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे वहां पर भी और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
0: Chennai is likely to witness a generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between minimum 28 degrees Celsius and maximum 38 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky again with light rain. Minimum temperature is expected to be 21 degrees while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 39 degrees Celsius in Hyderabad.
1: और श्रोताओं, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है।
0: जी।
1: एक ऐसा दिन जो उन सभी डॉक्टरों को समर्पित है जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से अनगिनत जिंदगियों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। शगुन देखा जाए तो डॉक्टर्स जो अपना एक रोल प्ले करते हैं, जो एक भूमिका निभाते हैं जिंदगियों को बचाने में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में, हमारे देश में हर साल 1 जुलाई को महान चिकित्सक, शिक्षाविद और प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन डॉक्टरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है जो दिन रात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर परिस्थिति में मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अब चाहे महामारी का कठिन दौर हो, कोई आपात स्थिति हो या फिर रोजमर्रा का उपचार, डॉक्टर अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते हुए मानवता की सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
0: Exactly, this day reminds us of the invaluable role that doctors play in safeguarding the health and well-being of our society.
1: तो आइए इस विशेष अवसर पर हम सभी डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उनके अमूल्य योगदान को नमन करें। सभी डॉक्टरों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका समर्पण, सेवा और मानवता के प्रति योगदान सदैव प्रेरणादायक है।
0: Indeed, we are truly grateful. Today, Vishal, it's also National Chartered Accountants Day. We also celebrate it.

0: And this recognizes the invaluable contribution of chartered accountants to India's economic growth and financial integrity as well. This is observed every year on 1st of July, and this commemorates the establishment of the Institute of Chartered Accountants of India in 1949. And for this occasion, let us acknowledge the dedication, professionalism and integrity of chartered accountants whose work continues to contribute significantly to India's progress and development.
1: और शगुन बात करते हैं अब देश दुनिया के इतिहास में 1 जुलाई की तारीख पर दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
0: First, let's take our listeners way back in time. In 1863, the Battle of Gettysburg began in Pennsylvania during the American Civil War.
1: आज के दिन 1867 में कनाडा कॉन्फेडरेशन महासंघ के माध्यम से एक स्वशासी डोमिनियन बना. इस तारीख को कनाडा दिवस को भी मनाया जाता है.
0: In 1916, the Battle of Somme began, becoming one of World War's deadliest battles. In 1946, the United States conducted the Able atomic bomb test, the first test of Operation Crossroads at Bikini Atoll.
1: Imperial Bank of India, यानी कि आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आज ही के दिन अस्तित्व में आया था. और हम सभी जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे पुराना बैंक भी है. 23,270 इसकी शाखाएं ब्रांचेस पूरे देश भर में हैं.
0: Oh, wow.
1: और 63,580 से भी ज़्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे देश भर में हैं. और स्टेट बैंक का कारोबार जो है वो 36 देशों में फैला हुआ है. इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बैंक है ये. और इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण किया गया था आज के 1955 में और इसे स्टेट ऑफ बैंक इंडिया नाम दिया गया. और देश के 1/4 बैंकिंग मार्केट पर स्टेट बैंक का कब्जा है.
0: ओह वाओ. इन 1963 द यूएस पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड द जिप कोड सिस्टम. इन 1974 फॉलोइंग द डेथ ऑफ युआन पेरोन, इजाबेल पेरोन बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट.
1: 1997 में आज के दिन हांगकांग को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया, जिससे वहां ब्रिटिश शासन का अंत हो गया.
0: In 2017, India implemented the Goods and Services Tax (GST), introducing the One Nation, One Tax system.
1: और अब बात करते हैं उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था. और सबसे पहले बात वीर अब्दुल हमीद की. आज के दिन 1933 में इनका जन्म हुआ था. भारतीय सेना की 4th ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे. इन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उत्ताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी. शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय के अजेय समझे जाने वाले अमेरिका में बने पाकिस्तान के पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया था. उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.
0: Well, yes. Due to the grim financial condition of his family, he couldn't study further and had to join his father at his family's tailoring shop. But at the age of 20, he joined the Indian Army and he trained at the Grenadiers Regimental Center in Nasirabad and was posted to 4 Grenadiers, you were also telling, in 1955. Today, listeners, we're also remembering great Leon Chancellor. Well, the excellent, excellent pop and funk drummer, and especially we know him for Michael Jackson's Billie Jean, his rhythmic aggressiveness and vitality distinguished anything he played, regardless of the context. He began playing drums at 12 and studied music in high school. He had brief stints with Miles Davis as well, Freddie Hubbard, and then joined another bands as well. He was a prominent producer in the 80s.

आज ही के दिन जन्म हुआ था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार।

0: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी मुरली की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी का जादू देश विदेश में बिखेरा। पंडित ने जी ने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाने का काम किया ही, साथ ही साथ संतूर वादक पंडित शिवशंकर शर्मा के साथ मिलकर शिवहरी नाम से हिंदी फिल्मों में मधुर संगीत भी दिया। और जिन फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया उनमें प्रमुख फिल्मों के अगर हम नाम लें तो चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय। और इन्होंने वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन और रॉक बैंड बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ भी काम किया।
1: वाओ, हाउ ग्रेट। सो म्यूजिक इज अ पाथ दैट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फाउंड फॉर हिमसेल्फ। ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स दैट केम हिज वे टू इमर्ज सक्सेसफुल विद हिज शीयर ग्रिट, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, डिवोशन एंड डेडिकेशन।
0: कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

प्रसिद्ध साहित्यकार अमरकांत, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं अमरकांत। इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक जैसी कहानियों से वे खासे चर्चित हुए। इनकी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन की पक्षधरता का खूबसूरत चित्रण मिलता है। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन और इन्हीं हथियारों से इनके प्रमुख उपन्यास भी रहे हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए ही इन्हें साल 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2009 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी साल इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात की जाए और उस्ताद राशिद खान का नाम ना लिया जाए तो ये कैसे हो सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने संगीतकार और गायक, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। राशिद खान को हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। उस्ताद राशिद खान ने शुद्ध भारतीय संगीत को हल्की संगीत शैलियों के साथ संयोजित करने का भी बेहतरीन प्रयोग किया। उस्ताद राशिद खान ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा और अगर हम उनकी आवाज़ का एक नमूना अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहें तो उस्ताद राशिद खान ने कई हिट गाने दिए और जब भी मैट एक फिल्म आई थी उसका एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग आइए सुनते हैं।

0: और आज के दिन जन्म हुआ था हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि, लेखक और संपादक लीलाधर जगूड़ी जी का। लीलाधर जगूड़ी की कविताएं आज के जीवन की व्यथा कथा के अनुभवों को स्पष्ट रूप से वाणी देती हैं। लीलाधर जगूड़ी उन कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अनुभव और भाषा के बीच कविता को जीवित रखा। इनके प्रमुख कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद, ये इनका प्रमुख कविता संग्रह रहा है। और पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और पद्मश्री सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
1: Well, today it's also Sudesh Bhosle's birthday. The playback singer, voice actor, live performer, universally celebrated as the iconic voice behind Amitabh Bachchan's most energetic musical tracks. He carved out a unique legacy by blending powerful vocals with extraordinary voice modulation.

0: तो आज सवेरे में आज बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
1: Well, we thank you so much, listeners, for tuning in. Namaskar.

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने

0: 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक,

0: पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी

चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Nareka. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry says that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat.

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है।

0: पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है। रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். அதனைத் தொடர்ந்து விஸ்வதர்ப்பன் மற்றும் வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई

0: में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
1: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक नेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. As the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 came into force today, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan termed the occasion a historic milestone. In a social media post, Mr. Chauhan said, the act marks a new chapter in ensuring dignity, self-respect and secure livelihoods for millions of rural workers. He said the act provides rural families with a statutory right to 125 days of employment. Expressing confidence in the initiative, Mr. Chauhan said it will create new livelihood opportunities in villages, accelerate the creation of sustainable assets, empower women and give fresh momentum to the vision of a self-reliant rural India. Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.50 rupees today. According to Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, will arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This will be the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. National Doctors' Day is being celebrated today across the country to honour doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The theme for this year is Behind the Mask, Who Heals the Healers, which highlights the importance of supporting the mental, emotional and physical well-being of doctors who dedicate their lives to caring for others. Prime Minister Narendra Modi extended greetings to the doctors of the country by saying that their hard work, compassion and commitment form the backbone of India's healthcare system. 78th National Chartered Accountants CA Day is being celebrated today across the country. The day marks the establishment of the Institute of Chartered Accountants of India in 1949 and honours the vital role chartered accountants play in financial transparency, corporate governance and economic

0: growth. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the 78th CA Day celebrations as chief guest at Vigyan Bhavan in New Delhi. Seven people were killed and more than 12 got injured after a sleeper bus caught fire following a collision with a truck on the Delhi-Mumbai expressway in Rajasthan's Dausa district. The accident occurred at around 3 a.m. near Tanwar village, close to Bandikui. The bus, which was travelling from Rishikesh to Indore, rammed into a truck and caught fire soon after the impact. Several passengers were trapped inside the burning bus and did not get an opportunity to escape. Police have launched an investigation to determine the cause of the accident, while efforts are underway to identify the deceased. Domestic equity benchmarks traded higher this morning, tracking firm global cues. Sensex jumped over 200 points to hit an intraday high of 76,697 in early trade, while Nifty rose 70 points to 23,934. Buying was seen in media, auto consumer durables, FMCG, IT, realty and pharma stocks. Death toll in Venezuela earthquakes has risen to 1,943, while the number of injured almost doubled to 10,571. The number of official rescues have drastically dropped in the last 3 days. The Venezuelan government said 5,380 people were saved in the first 2 days after the quakes, but on Monday, the authorities found only 4 people alive. In football, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium to qualify for the round of 16 of FIFA World Cup this morning. Raul Jimenez and Julian Quiñones scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. The co-hosts will now face either England or the Democratic Republic of Congo in round of 16 at the same venue on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार तापमान के बढ़ने और भीषण गर्मी से कृषि खाद्य प्रणाली में खाद्यान्न उत्पादन और आय में कमी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको अंतिम 16 में पहुंचा, इक्वाडोर 2-0 से पराजित। फ्रांस ने भी स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में बना ली है जगह। और 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी।
2: ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। भारत के साथ संबंध और सशक्त बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक विरासत और परस्पर आदर सम्मान पर आधारित हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष

0: दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तीय सेवा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाकर भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया।

0: राजनीतिक संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ग्रीस के आर्थिक और वित्त मंत्री किरियाकोस पियरकाकिस के साथ मुलाकात में दोनों पक्षों ने साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और ग्रीस के संस्थानों के बीच गहरे सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल ने ग्रीस के अवसंरचना और परिवहन मंत्री क्रिस्टोस डिमास के साथ भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने अवसंरचना, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, विमानन और सतत मोबिलिटी में भारत ग्रीस के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कल संयुक्त रूप से भीषण गर्मी और कृषि नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ता तापमान और भीषण गर्मी कृषि खाद्य प्रणालियों में खाद्यान्न उत्पादन और आय को कम कर रही है। इस प्रणाली पर 1 अरब 23 करोड़ लोग निर्भर हैं। साथ ही इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जब गर्मी के साथ साथ सूखा जैसी अन्य आपदाएं जुड़ जाती हैं तो कृषि उपज का नुकसान 3 गुना तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीषण गर्मी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर रही है। वेनेजुएला में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,943 हो गई है। लगभग 10,571 लोग इस त्रासदी में घायल हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि भूकंप के बाद पहले 2 दिन में 5,380 लोगों को बचाया गया, लेकिन सोमवार को अधिकारियों को केवल 4 लोग ही जीवित मिले। आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 25,000 से अधिक दमकलकर्मी, बचावकर्मी, पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी लगे हैं। दक्षिण अमरीका के वेनेजुएला में 25 जून को भूकंप के 2 तेज झटके आए थे और इन झटकों के बाद काराकास में कई इमारतें गिर गईं, जिनका असर वेनेजुएला की आबादी के एक बड़े हिस्से पर पड़ा है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमरीकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद कावरे पानलचोक में 40,000 से ज्यादा बत्तखों और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। धुलीखेल स्थित जिला पशुधन कार्यालय ने व्यावसायिक फार्मों में 40,000 से ज्यादा पक्षियों को मारे जाने की सूचना दी है। ये प्रकोप अब वहां 11 से अधिक जिलों में फैल गया है। रोकथाम के प्रयास के बीच पशुधन अधिकारी मुर्गी पालकों और आम लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हुसैन अली मुविनेई ने कल तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त विश्वदीप डे के साथ भेंट में जंजीबार के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जंजीबार में स्टेट हाउस में उच्चायुक्त विश्वदीप डे का स्वागत किया। उन्होंने विशेषकर निवेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की अहम भूमिका की सराहना भी की। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको इक्वाडोर को हराकर अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। अब रविवार को नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। उधर मोरक्को, पैराग्वे और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे स्टर्ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से पराजित किया। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। कल ओवल में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। हॉकी की बात करें तो भारत ने बेल्जियम दौरे के लिए 21 वर्ष से कम उम्र की पुरुष टीम की

0: घोषणा कर दी है। ये मुकाबले 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। ये दौरा इस वर्ष के आखिर में होने वाले FIH जूनियर एशिया कप हॉकी से पहले तैयारियों का अहम चरण होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது 100.1 MHz FM கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் சுகமான ராகங்கள் நாளை காலை 10:30 தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार देश के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस छूट से प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह

पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।

0: प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए, सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित

0: गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
0: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है, जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने

0: का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: India's engagement.
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: நேரம் 2:30. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்டு. FM கோல்டில் நேயர்கள் இனி கேட்கலாம் லய விநியாசம் நிகழ்ச்சியில் கேலமங்கலம் KC சந்திரசேகர், KT ராமன்ஜி ஆகியோரின் தவில் இசை இடம்பெறுகின்றது. நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுவது மிஸ்ரச்சாப்பு தாளம்.

0: சமயம்.
1: ఆకాశవాణి చెన్నై కేంద్రం కొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ నుండి ప్రసారం.
2: సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है. आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी.
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल. ये 6,970 करोड़ रुपीस की है. और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़. और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है.
2: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं. इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीकों को बदल दिया है. पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्र में एक को तैयार किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है. डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने

0: कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor with structures designed to easily upgrade to 6 lanes.
3: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
4: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 crore rupees. The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आमंत्रित कर रहा है टीजीटी समाज विज्ञान पद के लिए। आवेदन पद नियमित है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। मुंबई पत्तन प्राधिकरण में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले उपनिदेशक वर्ग 1 के एक पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी विवरण मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in पर उपलब्ध हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए www.mumbaiport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज के डेडलाइन सेगमेंट में बात करेंगे धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले, यानी जो डॉक्टर्स हैं, जो कई बार मुश्किल हालात में हमारे लिए बन जाते हैं देवदूत। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून जागृति। First of all, before we start, as you just mentioned, let us extend our gratitude to all the doctors on National Doctors' Day today. For all the pain you take away, for all the lives you save today and every day, we are grateful for your selfless service. You are the true guardians of our health, working long hours to bring healing and hope to countless families. Greetings to all the doctors on the occasion of the National Doctors' Day and salute to the caregivers of the society. So shall we now begin with the news making headlines at this hour of the day, Jagriti?
1: Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ है।
2: Increased wages under Viksit Bharat Jai Ram Ji Act become

0: effective from today.
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया.
0: Chief of Army Staff General Dheeraj Seth takes charge as the 31st Army Chief, stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment.
1: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया.
0: Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in next 2 days.
1: और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई.
0: And it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And as Jagriti had all mentioned in the beginning, that we will be talking about National Doctors' Day today. Every year on 1st of July, India celebrates National Doctors' Day to recognize the invaluable contribution of doctors to society and honor their dedication to saving lives. The occasion pays tribute to medical professionals who work tirelessly to care for patients, often in demanding and high-pressure environments. National Doctors' Day was first observed in 1991. The date, 1st of July, was chosen because it marks both the birth and death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy. Dr. B.C. Roy was born on 1st of July 1882 and passed away on this very day in the year 1962. He was a physician, educator, freedom fighter and a statesman. He also served as the Chief Minister of West Bengal and made lasting contributions to healthcare, education and public service. He was awarded the Bharat Ratna in 1961 for his contribution to the nation. His life continues to represent service, discipline, medical excellence and commitment to society.
1: जी, यानी 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन भारत के एक ऐसे महान सपूत को समर्पित है जिन्होंने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद रखी. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय केवल असाधारण डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी, महान शिक्षाविद और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी थे. नेशनल डॉक्टर्स डे हेल्थ केयर वर्कर्स के त्याग, दया और समर्पण को सराहने और अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थ केयर की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मौका है. इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यानी मास्क के पीछे इलाज करने वालों का इलाज कौन करता है. ये विषय दूसरों की देखभाल के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देने वाले डॉक्टरों की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत का ध्यान देने के महत्व पर बल देता है.
0: Yes, Jagriti, modern healthcare depends on trust. You may visit a doctor when you are unwell, worried about a symptom, planning preventive care, managing a long-term condition, or seeking reassurance for a loved one. In each situation, doctors do more than prescribe medicines. They listen, examine, explain, diagnose, counsel, and help you make informed decisions. National Doctors' Day reminds us that healthcare is built on both science and human care. It is a day to recognize the commitment doctors show in clinics, communities, emergency care, public health, research, teaching, and also in preventive medicine.
1: जी, और कई बार अनुजा हमने और आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम बीमार होते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, हम क्लिनिक पर जाते हैं और डॉक्टर के साथ में हम जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, आधी बीमारी कई बार हमारी वहीं पर हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो जो जिस पेशेंट्स के साथ वो सुनते हैं और हमारा जो काउंसलिंग करते हैं वो भी मतलब काबिल तारीफ है. इसके अलावा नई जिंदगी की शुरुआत इन्हीं डॉक्टर्स के हाथों होती है. नवजात शिशुओं की देखभाल, माताओं की जो मदद करते हैं, इन्फेक्शन हो किसी को तो इसका इलाज, पुरानी बीमारियों को जिस तरह से मैनेज किया जाता है, सर्जरी करते हैं और हमारे जो ठीक होने की प्रक्रिया है इस पर भी नज़र रखते हैं और परिवारों को मुश्किल मेडिकल स्थितियों को समझने में भी वो मदद करते हैं. और ये भूमिका सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होती है बल्कि डॉक्टर बीमारियों को रोकने में भी मदद करते हैं, जिसमें कि वैक्सीन देना हो गया, वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन यानी कि आपको कौन सी बेहतर चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें, तो न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर काम करते हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट या लाइफस्टाइल में बदलाव, बीमारी के शुरुआती संकेत और हेल्थ से

0: जुड़े जरूरी टेस्ट जितने भी होते हैं उनके बारे में भी ये डॉक्टर्स हमें जानकारी देते हैं और इस तरह से हमारी स्वास्थ्य का ये ध्यान रखते हैं।
1: Yes, a good doctor helps to understand our health without creating panic. They explain the risks, answer questions, and guide us towards the right next step. National Doctors' Day celebrates this blend of knowledge, responsibility, empathy, and service. Nowadays, more patients now want to understand their health better. They want clear reports, convenient access to testing, and reliable guidance as well. Doctors also rely on accurate diagnostic support to make timely decisions. This makes collaboration between doctors, patients, and diagnostic partners more important than ever.
0: बिल्कुल, और डॉक्टर्स की केवल तारीफ करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उनके रोल को और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो इमरजेंसी के टाइम पर उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, हमने कोविड में देखा है कि डॉक्टर्स ने 36 36 घंटे बिना ब्रेक लिए, बिना अपने घरों में जाए, लगातार लोगों की जान बचाने के लिए जो वो योद्धा बने, उन्होंने जिस तरह से लोगों की जान बचाई और हेल्थ केयर सिस्टम को उन्होंने मजबूती दी, वो उसके लिए हमें उन्हें समझना चाहिए और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ को किस तरह से महत्व देते हैं, हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। आजकल जैसे लाइफस्टाइल बीमारी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके लिए वो आपको टेस्ट जो है प्रेस्क्राइब करते हैं, लगातार निगरानी रखते हैं और आपको सलाह देते हैं जिससे कि जो भी ऐसी समस्याएं हैं अर्ली स्टेज पर उनका पता चले, और उसके साथ साथ वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी कैसे डाइट लेनी है, और जो टेस्ट हैं जितने भी ज़रूरी उनको भी करवाने की जो सलाह देते हैं। तो डॉक्टर्स की सलाह हम लोगों को माननी चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही है।
1: Certainly, Jagriti, National Doctors' Day is a reminder of the trust, effort, and care that shape every healing journey. It honors the doctors who help you understand symptoms. They also help us understand and manage illness, prevent complications, and make informed choices for our health.
0: बिल्कुल, डॉक्टर्स डे के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने देश भर के डॉक्टरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने मानवता की सेवा में डॉक्टर्स के समर्पण, संवेदना, कौशल और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ केयर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में देश की यात्रा में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत पहल के माध्यम से किफायती हेल्थ केयर के विस्तार, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और डिजिटल हेल्थ केयर को तेजी से अपनाने को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया।
1: Even Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the doctors of the country on the occasion of National Doctors' Day today. And in a social media post, Mr. Modi said that their hard work, compassion, and commitment form the backbone of India's healthcare system. He added that their tireless efforts, often in the most challenging circumstances, have earned the trust and gratitude of countless people.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने देशों के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काफ़ी तरक्की की है। मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी से ज़्यादा हो गई है, जबकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये अभूतपूर्व विकास डॉक्टर बनने के इच्छुक लोगों के लिए मौके अधिक दे रहा है, एक मजबूत हेल्थ केयर वर्क फोर्स तैयार कर रहा है और ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि अच्छी मेडिकल सुविधाएं देश के हर कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है, इसलिए देश के डॉक्टर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने, मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाने, इनोवेशन को अपनाने और सभी के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
1: And along with the Prime Minister and the Vice President, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for its unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded the doctors across the country for their exemplary professionalism and compassionate service to humanity, describing doctors as the cornerstone of the country's healthcare system. He recalled their tireless work to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. He added that doctors also have played a vital role beyond hospitals and clinics by serving as advocates for health equity, preventive health care, public health awareness, and

0: and also social justice. The minister further expressed hope that the selfless commitment and resilience of doctors continue to inspire the nation and strengthen the collective pursuit of a healthier India.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है.
0: And the micro, small and medium enterprises or MSME sector continues to be a key pillar of India's economy, contributing to employment and industrial growth. Goa has also witnessed steady expansion in the sector through various initiatives aimed at promoting entrepreneurship and manufacturing. We have more on this from our correspondent.
2: The MSME sector remains one of the key drivers of India's economy, contributing significantly to employment, manufacturing and entrepreneurship. According to official data, over 7 crore enterprises are registered on the Udyam portal, providing employment to around 32 crore people across the country. In Goa, more than 90,000 MSMEs have been registered, reflecting the steady growth of the sector in the state. The state has undertaken several initiatives to promote industrial development, including support for manufacturing and maritime industries, with efforts focused on expanding Goa's production capabilities. There is also a growing emphasis on creating digital platforms that enable MSMEs to showcase and market their products globally, helping local enterprises access international markets and improve competitiveness. The continued expansion of MSME sector is expected to strengthen Goa's economy while contributing to India's broader industrial and employment growth. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
1: और अब चलते हैं वाराणसी की ओर, जहां पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पूर्वांचल और देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई. पिछले 25 जून को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली हब एंड स्पोक विमान सेवा की शुरुआत की. नई व्यवस्था के तहत वाराणसी एयरपोर्ट को प्राइमरी स्पोक के तौर पर विकसित किया गया है, जो यात्रियों को देश के प्रमुख हब एयरपोर्ट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुगम बनाएगा. केंद्रीय विमानन मंत्री ने वाराणसी एयरपोर्ट से देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत को एक ऐतिहासिक कदम बताया.
3: हब एंड स्पोक सेवा की शुरुआत के साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट देश के विमानन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है. इस पहल से वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट पर जाकर दोबारा लगेज लेने, टर्मिनल बदलने और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी. इमिग्रेशन और अन्य औपचारिकताएं वाराणसी में ही पूरी होंगी, जिससे यात्री दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट पर सीधे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट कर सकेंगे. इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हब एंड स्पोक की यह पहल वाराणसी को सीधे वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि किसी शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने में एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलती है. श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा. निश्चित तौर पर इस पहल से पूर्वांचल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को काफी लाभ मिलने वाला है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता.
1: और अब आते हैं मध्य प्रदेश की ओर. प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश की 12 उद्यानिकी फसलों को एक साथ भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है. देश में ये पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में GI टैग हासिल हुआ है.
0: यस जागृति, दिस विल सर्टेनली गिव अ मेजर बूस्ट टू फार्म एक्सपोर्ट्स एंड द 12 न्यूली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स स्पैन यूनिक native fruits, vegetables and agro-processed commodities as well in this.
1: बिल्कुल, और आइए सुनते हैं अधिक इस रिपोर्ट में.
4: मध्य प्रदेश की माटी की खुशबू अब देश दुनिया में और गहरी हो गई है. प्रदेश की 12 उद्यान की फसलों को एक साथ GI टैग मिलने से ये इतिहास रचा गया है. गुना का सुगंधित कुंभ राज धनिया, नरसिंहपुर के बरमान घाट का भटा और बैतूल का गजरिया आम इसमें शामिल है. खरगोन की तीखी लाल मिर्च और मांडू की अनोखी खुरासानी इमली को भी ये सम्मान मिला है. जबलपुर की हरी मटर, सिवनी का जम्बो सीताफल, मालवा का आलू गराडू और नरसिंह पुर का गुड़ भी इस सूची में शामिल है. जबलपुर का सिंघाड़ा, अलीराजपुर का नूरजहां आम, बुरहानपुर का केला.

0: इंदौर का जीरावन मसाला, रतलाम की बालम ककड़ी और छतरपुर का पान भी अब जीआई टैग के गौरव से जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि गुना जिले से हर साल 32,000 मेट्रिक टन धनिया देश के कुल उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा बनता है और विदेशों तक पहुंचता है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की पहचान और बाजार में साख मजबूत होगी, साथ ही नकली उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगेगी। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और निर्यात के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: और पुरी में विश्व विख्यात महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। श्री मंदिर में रथ यात्रा से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। देवस्नान पूर्णिमा के बाद भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अनसर यानी अनवसर काल में हैं। मान्यता है कि महाप्रभु इस दौरान ज्वर से पीड़ित होते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष सेवाएं और उपचार संबंधी अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: देव स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान बीमार होकर अनसर काल में श्रद्धालुओं को शिव विग्रह के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। इस अवधि में भक्त केवल शिव मंदिर में स्थापित पट्टी दिया यानी पट्टचित्र स्वरूप के दर्शन अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। शिव मंदिर के भीतर महाप्रभु के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार विशेष सेवाएं जारी है। उधर भगवान के अनसर काल के दौरान पुरी जिले के ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ पीठ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु भगवान अलारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान श्री जगन्नाथ भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, तब भगवान अलारनाथ के दर्शन करने से ही वही पुण्य प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथ संस्कृति के जानकार
3: रंजन पंडा कहते हैं,
4: स्नान पूर्णिमा में महाप्रभु जी के स्नान के बाद महाप्रभु जी बुखार आ जाती है, वो उनको अनवसर नीति बोलते हैं। उसके लिए 15 दिन महाप्रभु जी को कोई भी दर्शन नहीं करेंगे, कोई स्पर्श नहीं करेंगे, कुछ महाप्रभु जी के अन्न भोग भी नहीं लगेगा। अलग एक भोग का व्यवस्था करा जाती है, जैसे चकटा भोग, प्रपानक भोग, मलाई भोग, ये सब लगता है। और बाहर में महाप्रभु जी का चित्रपट का सेवा होती है, जैसे नारायण, वासुदेव और भुवनेश्वरी, ये पूजन होता है। और देखेंगे तो ये 15 दिन महाप्रभु जी का विश्वावसु और विद्यापति जो वंशज है उनके सेवा रहता है। अंदर में महाप्रभु जी का स्वस्थ करने के लिए सुविधा रहता है। अनवसर का 5वें दिवस में महाप्रभु जी का तैल मर्दन होगा। और इसी समय में जो भी भक्त आती है महाप्रभु जी का दर्शन नहीं पाती है, वो कहाँ पर जाती है, ना अलारनाथ का दर्शन करते हैं। और वहाँ पर खीर प्रसाद जो पायस भोग फूलते है वो भी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि महाप्रभु जी को एक छोटा बच्चा वहाँ पर प्रसाद खीर भोग लगाए थे और महाप्रभु जी पाए थे।
2: अनसर काल की ये परंपरा सदियों पुरानी है। भगवान के स्वास्थ्य लाभ की अवधि में अलारनाथ दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व तो माना जाता है और इसी कारण हर वर्ष इस दौरान वहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आगामी रथ यात्रा को लेकर राज्य सरकार और शिव मंदिर प्रशासन भी व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वर्ष रथ यात्रा के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से महाप्रभु के दर्शन कर सके। इस वर्ष 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होगा। इसके बाद 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा, 25 को सुनावेश, 26 को अधरपणा नीति तथा 27 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ रथ यात्रा का समापन होगा। परिक्रमा के लिए मैं इतिश्री सिंह राठौर।
5: And now we have some news from the Indian Film Festival in Germany. Germany is all set to host the Stuttgart Indian Film Festival from the 23rd to the 26th of this month, bringing Indian cinema to the international stage. The festival will feature more than 70 films, including feature films, documentaries and short films from across India. Malayalam cinema will be one of the main attractions of the festival. The curtains for the festival rises on the 23rd of this month with Malayalam thriller Echo from the Infinite Chronicles of Kuriyanchan, directed by Dinjit Ayathan. On the same day, school students will get a special screening of director Varsha Bharat's coming-of-age film Bad Girl. The documentary section will also feature several films focusing on social issues and people from different walks of life. Among the major titles is Saath Paar Zindagi.

जादूगर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का आज जन्मदिन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित चौरसिया ने बांसुरी की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चौरसिया जी ने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने संतूर वादक पंडित शिव शंकर शर्मा के साथ मिलकर शिवहरि नाम से कुछ हिंदी फिल्मों में मधुर संगीत भी दिया।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है.
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी. 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा. ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है. इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है. ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है. परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है. इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है.
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में. कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा. 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है. 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको. कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे.
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है. नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी. श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग

0: उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட். நிகழ்ச்சி நிரல் இந்த அலைவரிசையில் இன்றும் நாளையும் இடம்பெற உள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. அறிவிப்பினை தொடர்ந்து 6:10 விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல், 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல், 7:10 இளைய பாரதம், பூமி நம் பொறுப்பு கலந்துரையாடல், பங்கேற்பவர்கள் பி திவ்ய பாரதி, வி துர்காதேவி, கே ஆனந்தி ஆகியோர், 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 திரைக்காணம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 சர்ச்சாக்கா விஷயகை, 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ் நிகழ்ச்சிகள் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல், 11:40 திரைகாணம். நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் உஸ்தாத் ரஷீத் கான் அவர்களின் பாட்டு இடம்பெறும். அதிகாலை 4:10 பொங்கும் மங்கலம், திருவல்லிக்கேணி பி எஸ் சதாசிவம் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்கலாம். பள்ளிக்குளம் பி ஜி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தவில். 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசையில் பக்தி பாடல்கள் ஒலிக்கும். 7:25 திரை இசை, 7:30 ஆர்ட் செவேரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், 8:30 திரைகாணம். நாளை காலை 9:00 அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் யூபி ராஜு, யு நாகமணி ஆகியோரின் மேண்டலின் இசை கேட்கலாம். ஷேர்தலை ஆர் அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம், வி அனிருத் ஆத்ரேயா அவர்கள் கஞ்சிரா, 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:10 திரைகாணம், 11:30 மல்லே பூத்தண்டா தெலுங்கு நிகழ்ச்சியில் பி மதுசூதனராவ் அவர்களின் உரை இடம்பெறும். நண்பகல் 12:00 நிகழ்ச்சி நிரல் தொடர்ந்து திரைகாணம், 12:50 மெல்லிசை,

0: பிற்பகல் 1:10 இசை மலர். நிகழ்ச்சியில் பூர்ண பிரஜ்ஞராவ் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். டாக்டர் எம் நர்மதா அவர்கள் வயலின், கோனேரி ராஜபுரம் வி வரதராஜன் அவர்கள் மிருதங்கம். இரண்டு 2:30 முதல் மாலை 4 வரை திரைகாணம் ஒழிக்கும். மாலை 4:10 தேநீர் நேரம், 4:20 எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ், 4:25 ரோஸ்கர் சமாச்சார், 4:30 பரிக்ரமா செய்தி தொகுப்பு, நிகழ்ச்சிகள் டெல்லி அஞ்சல். நாளை மாலை 5 அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் ராதா பார்த்தசாரதி அவர்கள் பாடியுள்ள பக்தி பாடல்கள் கேட்கலாம். எஸ் சுபஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், நெய்வேலி கே கணேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம். 6:05 நிகழ்ச்சி நிரல், 6:10 விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல், 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல். நாளை இரவு 7:10 பட்ஸ் அண்ட் பிளாசம்ஸ். சேஃப்டி சேவ்ஸ் லைவ்ஸ். குவின் மோனலிசா வழங்கும் முறை இடம்பெறும். மெமோரபிள் ஸ்டோரி சொல்பவர் ஹேத் அண்ட் ஷிகா. தொடர்ந்து மியூசிக்கல் டேலண்ட். ஸ்ரீரஞ்சனி வழங்கும் வீண இசை இடம்பெறும். தொடர்ந்து சயின்ஸ் இன் த ஏஜ் ஆஃப் ஏஐ அண்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். இரா டியூபே வழங்கும் முறை இடம்பெறும். 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 திரைகாணம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 கண்ட்ரி வைட், 9:45 இன்சைட்ஸ், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், நிகழ்ச்சிகள் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல், 11:40 திரைகாணம் ஒழிக்கும். நேயர்கள், இதுவரை இந்த அலைவரிசையில் இன்றும் நாளையும் இடம்பெற உள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பினை கேட்டீர்கள். தொடர்கிறது விஸ்லேஷன் டெல்லியிலிருந்து.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण का पहला अंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 सेशल्स यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, विकास सहयोग को नई गति मिली और समुद्री सुरक्षा से लेकर डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और क्षमता निर्माण तक कई क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस यात्रा की भारत की विदेश नीति, समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के कार्यक्रम में इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस वर्ष सेशल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के भी 50 साल पूरे हुए हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सतत विकास जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की। आइए समझते हैं कि आखिर सेशल्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
3: हिंद महासागर में स्थित सेशल्स भले ही क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से छोटा देश हो, लेकिन समुद्र में उसकी अवस्थिति उसे बेहद रणनीतिक बनाती है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर के बीच समुद्री संपर्क का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत लंबे समय से मानता रहा है कि हिंद महासागर केवल व्यापार का मार्ग नहीं बल्कि सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता का भी आधार है। यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महासागर विजन में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा से पहले जारी वक्तव्य में भी कहा था कि सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और महासागर विजन तथा ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रमुख भागीदार है। इसी सोच को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र

0: राष्ट्रपति हरमीनी के साथ संयुक्त वक्तव्य में भी दोहराया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर दोनों देशों का साझा घर है और उसकी सुरक्षा, समृद्धि तथा स्थिरता दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
1: हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश केवल भारत और सेशेल्स तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की सोच को भी सामने रखता है। इसी संदर्भ में अब ये समझना जरूरी है कि समुद्री दृष्टि से सेशेल्स का महत्व क्या है। आकाशवाणी ने हिंद महासागर में भारत और सेशेल्स की कूटनीतिक साझेदारी के विषय पर पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार से विशेष बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है समुद्र से ही हम आगे लेकर चलते हैं। मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है और उसको भारत पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर सुरक्षा और विकास दोनों को आगे बढ़ाना चाहता है।
3: अब तक हमने समझा कि सेशेल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आने वाले समय में इनका दोनों देशों के संबंधों तथा हिंद महासागर क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में सबसे अधिक चर्चा डिजिटल भुगतान व्यवस्था यानी UPI को लेकर हुई। समझौते के अंतर्गत भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सफल अनुभव को सेशेल्स तक ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य केवल भुगतान को आसान बनाना नहीं बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन औषधि योजना से जुड़ा समझौता भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सेशेल्स के लोगों को भारत से किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का सहयोग भी आगे बढ़ेगा। यात्रा के दौरान भारत ने केवल समझौतों की ही घोषणा नहीं की बल्कि विकास सहयोग को भी नई मजबूती दी है। सेशेल्स को एक तेज गति वाला गश्ती पोत, रक्षा बल के लिए वाहन और नौकाएं, 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल और 8500 मीट्रिक टन सीमेंट भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। भारत और सेशेल्स के बीच घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत लगभग 1250 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से वहां की प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: यात्रा का एक और ऐतिहासिक पहलू भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और सेशेल्स के रिश्ते केवल पिछले 50 वर्ष के नहीं बल्कि इनकी जड़ें 250 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। उन्होंने लोकतंत्र, कानून के शासन, जन केंद्रित विकास और साझा मूल्यों को दोनों देशों की साझेदारी का आधार बताया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत सेशेल्स को केवल एक छोटे द्वीपीय देश के रूप में ही नहीं देखता बल्कि एक बड़े महासागरीय राष्ट्र के रूप में देखता है, जिसकी भूमिका हिंद महासागर के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च विशेष सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें हरित विकास, जलवायु परिवर्तन से मुकाबले, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और

0: छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल समझौतों और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सोच को भी सामने लाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता देने और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर लगातार जोर दिया है। सेशल्स की ये यात्रा उसी व्यापक सोच का ही विस्तार है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने भी यही बात कही।
1: भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर से हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके

0: खास तौर से हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, कॉप की मीटिंग्स हैं या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है। इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से एक संदेश स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भारत अपने पड़ोसी और समुद्री साझेदार देशों के साथ ऐसे संबंध विकसित कर रहा है जो केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रहे हैं। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने। नमस्कार।

0: खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
1: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीज की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामी दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृत् कालः अग्रे गमिष्यति। आगामी दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे, बिहारे, उत्तराखंडे, ओडिशा प्रदेशे, विदर्भ क्षेत्रे च प्रचंडतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य 16 तमे चरणे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar haazir hain. Hamare sath charcha ke liye studio mein aamantrit hain आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज राइज ओवर हाफ ए परसेंट. सेंसेक्स गेन्स नियरली 450 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 24,000. जीएसटी कलेक्शन सर्ज ऑलमोस्ट 14% टू ओवर 1,94,000 करोड़ रुपीज इन जून दिस ईयर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई खरीदारी, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लाभ में रहे. सेंसेक्स लगभग 450 अंक उछला. निफ्टी 24,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद. देश में इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह लगभग 14% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से, जहां आज खरीदारी तेज रही और पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साथ ही निफ्टी सभी प्रमुख सूचकांक लगभग 0.6% लाभ के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़त के साथ 76,923 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स 100 में 0.3% से अधिक की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी लगभग 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.6% higher today, snapping a two-session losing streak. Sensex rose by 444 points to close at 76,923. Nifty also gained 140 points to settle at 24,006. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index added over 0.3% and the small

0: 100 index climbed around 0.4%. Earlier, markets opened marginally higher. Both the stock market indices extended their upward momentum throughout the session, supported by softer crude oil prices and buying across specific sectors.
1: Sensex pack par dhyan dein to 30 mein se 21 companies ke share aaj laabh ke saath band hue. सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में अव्वल रही कंपनी एटर्नल, जिसके शेयरों में 5.7% की वृद्धि हुई. एशियन पेंट्स में 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3% ऊपर उठकर बंद हुए. उधर बिकवाली के दबाव में एचसीएल टेक के शेयर लगभग 3.5% लुढ़क गए. उधर टेक महिंद्रा में लगभग 3.1% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 2.5% से अधिक का नुकसान देखा गया.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 आउट ऑफ द 25 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन अमंग द की गेनर्स. Realty climbed 3.6%, FMCG rose 1.8%, and services added over 1.3%. In contrast, focused IT fell 2.5%, IT lost 1.9%, and metals dipped 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,276 companies advanced, 1,995 companies declined, and 176 companies remain unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 57 पैसे कमजोर हुआ, 95.24 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.37 पर चल रहा था. पुरी जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में आज थोड़ी सी तेजी देखी गई है, मूड थोड़ा सा बदल गया है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बाजार पर?
2: मनोज जी, देखिए, भारतीय शेयर बाजार एक बहुत ही मैं कहूँगा एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहा है. क्योंकि, और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक इसकी बाजार की स्ट्रेंथ रहे हैं. जैसे आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स थे वो अभी तक इस बाजार की हम कहेंगे कि एक नींव रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम काफ़ी गिरावट देख रहे हैं. काफ़ी आज के दिन भी जबकि बाजारों में अच्छी तेज़ी थी, हमने आईटी के शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखी. और वहाँ पर काफ़ी निवेश है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी, इंस्टीट्यूशंस का भी, और आईटी क्षेत्र भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है. दूसरे तरफ देखें तो जो कंज्यूमर कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज में हम पिछले काफ़ी दिनों से गिरावट देखते आ रहे थे. और यूजुअली हम एफएमसीजी कंपनीज को इकोनॉमी का एक दर्पण मानते हैं. हम मानते हैं कि अगर एफएमसीजी कंजम्पशन कम है तो उसका असर, नेगेटिव असर, सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है. वहाँ पर हमने आज तेज़ी देखी जो एक पॉजिटिव साइन है. यानी वो पॉइंट कर रहा है कि आने वाले समय में शायद कंजम्पशन यहाँ बेहतर हो. जो हम नेगेटिव इफेक्ट सीख रहे थे मिडल ईस्ट वॉर के, शायद वो इफेक्ट्स अब कम होंगे. कुछ हमने कमी देखी है, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ में कमी आई है, वहाँ पर थोड़ी गिरावट आई है, तो कंजम्पशन बढ़ सकती है. तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं आपकी बाज़ार जो है एक मिले जुले दौर से गुजर रहा है. ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है. मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं. हमने देखा जो इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आया, कोर सेक्टर ग्रोथ का डेटा आया, वो उम्मीद से बेहतर था. क्योंकि पिछले महीना अगर आप देखें जून का, काफ़ी मुश्किल महीना था क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट बहुत था, सप्लाई चेन्स काफ़ी डिसरप्टेड थी. तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रुख है. पर मुझे लगता है कि आने वाले समय, ये एक पॉइंटर है कि आने वाले समय में जैसे थोड़ी और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होंगी तो बाजार और बेहतर हो सकता है.
0: पुनीत, एफएमसीजी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट रोज 1.8% टुडे. अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड. वी आर द हाइट ऑफ द समर सीजन. देयर इज आल्सो अ प्रोजेक्शन ऑफ ड्राउट बिकॉज 43% less rainfall has been predicted by IMD. How do you see all of that playing into, you know, your food and beverage consumption and really the pricing of FMCG stocks, because they seem to adjust quite well?
2: So Arjun, interestingly, FMCG sector, like I said, is a very important sector of the economy, because it not only concerns large companies, it concerns consumption by people at large, and it gives us some kind of an idea what is the trend in the economy. Now, FMCG sector is going through some kind of a turmoil, because what we saw was some pullback in consumption lately. At the same time, we saw prices going up because the input prices, the raw material prices, which are commodities, they really shot up in the last 2-3 months. Fortunately, today we saw that there was a pullback.

0: in most commodity prices, you would see that even commodity stocks, a lot of them pulled back today. So probably the market is reading that going forward, prices in commodities and therefore the input prices for FMCG companies will come down and the profitability will rise. Yes, there are concerns about consumption because of lack of rainfalls and the expectations of a shortfall in monsoon rains this year. That is there. I don't think we can wish that away. That is, we're going to deal with it. Government is trying to bring in measures which will improve the situation. But I think that challenge being there, we will see margins improve because of fall in prices for inputs.
1: Puneet ji, aapne charcha ki IT sector ki aur kaha ki wahan par sthiti उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी. यहाँ पर क्या समझा जाए कि हमारी आईटी सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में परिवर्तन चल रहा है वहाँ खरा उतरने में पीछे रह रही है या ढांचागत समस्या आ रही है हमारी आईटी सेक्टर में सेवाओं को लेकर या कह लें जो नए प्रोडक्ट उनके हैं उनको लेकर.
0: मनोज जी देखिए, सच बात तो यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल से बाहर है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हो रहा है उससे जो काम करने का तरीका बदल रहा है फॉर पर्टिकुलरली फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज वो एक बहुत बड़ा बदलाव है इस सेक्टर के लिए. आज ही एक बहुत प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी टॉप लाइन ग्रोथ की उसको काफ़ी मेजरली कट किया. उसका नेगेटिव असर सारी इंडस्ट्री पर आया. कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स अपने पिछले 10 साल के सबसे नीचे स्तर पर चल रहे हैं जबकि अच्छी कंपनीज हैं, काफ़ी प्रॉफिट्स हैं वहाँ पर और बहुत बड़े पैमाने पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं. तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 वर्ष ये काफ़ी डिफिकल्ट रहेंगे इस सेक्टर के लिए. उसके बाद जो नए आयाम होंगे, नए डायमेंशंस होंगे, किस प्रकार से ये देखिए डिजिटल दुनिया तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है तो इंडियन कंपनीज भी अडेप्ट करेंगी पर शायद अभी मार्केट्स को मैं कहूँगा डाउट है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगी, कौन सी कंपनीज ग्रो करेंगी, ये भी क्लियर नहीं है. तो इस पूरे माहौल में अनसर्टेनिटी का माहौल है उसमें जो आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स हैं उसमें हम कुछ गिरावट देख रहे हैं.
2: पुनीत, लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज डिपेंड अपॉन आउटसोर्सिंग, ऑफशोर आउटसोर्सिंग फ्रॉम यूएस कंपनीज हु आर नाउ डिपेंडेंट अपॉन artificial intelligence income from that particular service and capital expenditure on artificial intelligence data centers being created as a result of it. And we've seen from the earnings results of bellwether IT companies in India that a lot of their AI income has gone up. So how do you see IT companies adjusting to this? Because it's not necessarily it's high skilled, but it's a lot of jobless growth as well. Is that really what is hitting the IT sector now?
0: So jobs vis-a-vis the growth of AI in workplaces, of course, is a major concern. We still do not know, but it's as it unravels, there are definitely huge concerns about employability of people, particularly countries like India, where we have large white collar workers. There could be a significant impact on employment. This is just the beginning. We don't know what is going to happen. I think it will take a couple of years to play out. But IT companies, of course, are at the receiving end of this entire turmoil.
2: Your short opinion on metals, because it's been known to be volatile in the past as well. So we saw it slip by 0.9% today. Now we can see producers, in fact, looking for a substitute for copper. Aluminium being one of them, because a lot of EV production is using copper. They want to substitute it for aluminium. Do you see these kind of policy changes actually impacting metal stocks now?
0: Definitely. I think, in fact, in the last 2-3 months, commodity prices, particularly metal prices, have really shot up, even steel prices and other non-ferrous metals. So I think the industry is trying to bring down those prices because inflation is really hurting them. But my guess is this will take a couple of years. It's not going to happen overnight. I think this is a slow process. It will take some time.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक शेयर बाजार की ओर. सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला है. खरीदारी के समर्थन से ताइवान के ताइएक्स सूचकांक में 1.9% से अधिक की वृद्धि हुई. वहीं जापान का निक्की 225.6% लाभ के साथ बंद हुआ. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% से अधिक की बढ़त हुई. इसके विपरीत बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2% की भारी गिरावट हुई. उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% नीचे आ गया. अवकाश के

0: फ़ायदा होता था, अब हम देख रहे हैं कि उसका सिलेक्टिव फ़ायदा हो रहा है। कुछ एरियाज़ हैं, अगर हम एशिया में देखें तो भारतीय बाज़ारों में गिरावट रही, FIIs की सेलिंग थी, और वहीं पर कोरिया, जापान, ताइवान, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे हमने तेज़ियाँ देखी और वहाँ पर शेयर मार्केट भी ऊपर गई। तो क्लियरली ये जो इम्पैक्ट है अमेरिकन अर्थव्यवस्था का वो सिमिलर एक बराबर नहीं है सबके लिए, और शायद इसका कारण ये है कि जो एक स्क्यूड पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो हैं, मुझे लगता है उसका असर है ये कि ये पूरे अर्थ जो अर्थशास्त्र के नियम हैं रीराइट किए जा रहे हैं।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लौटते हैं स्वदेश। वस्तु और सेवा कर लागू हुए 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं, यानी 9 वर्षों से जो एक नई प्रथा शुरू हुई वह किस दिशा में हमें लिए जा रही है उसके आंकड़े गवाह हैं, और जून के आंकड़े इस वर्ष के कह रहे हैं कि GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में ये कहा गया कि जून में घरेलू GST संग्रह 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि आयात पर GST संग्रह 34.6% बढ़ा, 60,038 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कुल मिलाकर GST की दिशा और देश की आर्थिक दशा किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं समझना चाहेंगे, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं?
0: देखिए यहाँ भी मैं कहूँगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफ़ी डिफिकल्ट महीना है, महंगाई की दर बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम होने की आशंका थी, बारिश नहीं हो रही थी, ये सब चिंताओं के बीच में हमको GST जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो अच्छा आता है, वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही होगी। तो ये काफ़ी एक अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हैं, हालांकि इसमें काफ़ी बड़ा योगदान इम्पोर्ट के नंबर्स का है। अगर आप देखें जो हमने, यानी ज़्यादा आयात हम कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे जो रुपी पे है उस पर प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि वो इस दौरान भी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है, स्ट्रांग रखा है, और कंजम्पशन जो है, क्योंकि GST नंबर सीधे कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भारत में अभी भी अच्छी चल रही है। ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, बट दैट इज ट्रू।
2: The next generation GST reforms were carried out in 2025. We saw a spike in auto sales. What do we expect in 2026?
0: So, I think those reforms are playing out still. So, we've seen a rebound in auto sales, like you mentioned, which was light goods. Now, we are seeing some stability in FMCG and consumption items. So, my guess is that simplification of GST should really help not only consumers, it should help producers also. The companies which pay GST to government, they're also looking for ease of doing business. My guess is that government will try and simplify this further. In fact, the policy making decision, they will kind of roll out over the next 6 months. We probably will see a better year in 2027.
2: In more good news, the Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on a year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month, according to data released today by the National Payments Corporation of India. On an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. So it seems the June news has really, I'm sure it'll give economists something to think about. But when we come about, when we talk about electronic transactions, payments we made in this way, what is the role of cash going to be in the future?
0: So, while we, of course, ideally cash transactions should have gone down, surprisingly, we haven't seen a much decline in cash transactions. In fact, cash in circulation in India has gone up lately. But probably that is a sign of the economy expanding to pockets of rural India and other places. Overall, UPI definitely has helped us. But I think cash still continues to be the king.
2: So Digital India program depends a great deal on the internet.
0: Absolutely. And I think we have done very well in that area.
1: अच्छी खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हैं ग्रामीण भारत की ओर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से लागू हो रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: में कमी देखी है। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि भी आने वाले कुछ समय तक थोड़ा कमजोरी रहेगी प्रेशियस मेटल्स में, और शायद फिर कंसोलिडेशन होकर अगले 2 या 3 महीनों बाद शायद हम थोड़ी स्टेबिलिटी देखें। मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि यहाँ से थोड़ी कमजोरी अभी और हम देख सकते हैं इन इन प्रेशियस मेटल्स।
1: एंड व्हाट्स द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, इज दैट प्लेइंग अ रोल इन द स्टेबिलिटी इन प्राइसेस?
0: डेफिनेटली, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, इफ यू सी, दे हैव फॉलन, एंड देयरफॉर गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो अंडर प्रेशर।
2: बस यहीं पर पुनीतजी श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद मनोज जी।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise over 0.5%. Sensex gains nearly 450 points. Nifty settles above 24,000. GST collection surge almost 14% to over 1,94,000 crore rupees in June this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों

0: या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
2: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 crore rupees। द सेकंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
1: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said, conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls and benefit the economy. The Supreme Court today laid down guidelines on how courts should determine the annual income of deceased victims in motor accident or injured claimants on the basis of income tax returns. In a significant verdict aimed at bringing uniformity to motor accident compensation, a bench of Justices Sanjay Karol and N. Koteshwar Singh held that salaried individuals, only the income tax return of the previous year will be sufficient for showcasing the annual income. In case of self-employed persons, the bench held that the average income disclosed in ITRs for up to the previous 3 years should ordinarily serve as the reference point. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57th

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है.
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी. 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा. ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है. इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है. परियोजना से लगभग 7,54,000 का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है. इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है.
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में. कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा. 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है. 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको. कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे.
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है. नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी. श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है. आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए. मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमित

0: नेताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। केंद्र सरकार ने श्री सोमनाथ घोष को मलेशिया में देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्री घोष 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
2: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 crore रुपीज। द सेकेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
1: Union Home Minister Amit Shah has asked the High Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls, and benefit the economy. Supreme Court today laid down guidelines on how courts should determine the annual income of deceased victims in motor accidents or injured claimants on the basis of income tax returns. In a significant verdict aimed at bringing uniformity to motor accident compensation, a bench of Justices Sanjay Karol and N. Koteshwar Singh held that for salaried individuals, only the ITRs of the previous year will be sufficient for showcasing the annual income. In case of self-employed persons, the bench held that the average income disclosed in ITRs for up to the previous 3 years should ordinarily serve as the reference point. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara, Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal expressed grave concern over its destruction, along with reports of no meaningful action being taken by local authorities or the Evacuee Trust Property Board. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate this matter and bring the perpetrators of this act to justice. Mr. Jaiswal stressed that the demolished portions of the Gurudwara Sahib should be restored and reconstructed at the earliest. New Delhi has also urged Islamabad to discharge its obligations.

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
1: நமஸ்கார், மேன் ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம். ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை, ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை, ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के

0: साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के

0: विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट

चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं

0: तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे हैं कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना है, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है, इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है। और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है,

0: 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
1: सरकार ने इसकी नींव रखी। जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
0: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
1: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
0: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
1: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपये का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गाँव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI के एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि अभी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहाँ से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
0: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिस

0: क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है,
1: जी
0: जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने,
1: जी
0: तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते हैं। तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये
1: जी
0: मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द डिपो इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में
1: जी
0: जीपीयू दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है।
1: जी
0: लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड
1: जी
0: दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है,
1: जी
2: ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया।
1: जी
0: सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री,

0: आज हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि
1: जी
0: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी
1: जी
0: करप्शन ये सब है, वो सब हट गया है। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है,
1: काफी निर्यात कर रहे हैं हम
3: जी। और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे, तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें, तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं कि आपको

0: क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
1: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है। हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे। एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जब भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है। अभी
0: जी
1: क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल, क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है,
0: जी
1: मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग वो सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही
0: जी
1: बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
0: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
1: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज। क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं। लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और ये इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए जाए सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंड ना रहे।
0: जी अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया।

0: या अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन करे हैं, अब
1: जी
0: ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीज़ें चाहिए, जैसे वहाँ की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सकें और उनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक सकें। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है। पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है, और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफ़ी हद तक मुक्त किया गया है, काफ़ी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों। क्योंकि अगर आप हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी, जरूर। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि
1: जी
2: ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
1: जी
2: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल। क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस को

0: वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एई के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेंगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हो। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the cabinet has approved

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकायुची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल होंगी शामिल। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में स्थित 125

0: 25 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख ऊफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से जारी। और अब समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और मलेशिया ने आज नई दिल्ली में 12वीं उप समिति की बैठक के दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पहलुओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक में सैन्य आदान प्रदान, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग सहित विभिन्न रक्षा गतिविधियों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने सोमनाथ घोष को मलेशिया में देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्री घोष 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुद्वारे को ध्वस्त किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों या विस्थापित न्यासी संपत्ति बोर्ड की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर भी चिंता जताई। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी सेना ने एक सप्ताह में दूसरी बार रूस की प्रमुख ऊफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में रूस के पेंजा क्षेत्र में मिसाइल घटकों का विनिर्माण करने वाले एक संयंत्र पर भी हमला किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि ऊफा रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े लुब्रिकेंट उत्पादों से एक है और यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। यूक्रेन ने दावा किया कि ड्रोन हमलों ने रूसी बढ़त को धीमा कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने हमलों की पुष्टि नहीं की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 16 रूसी क्षेत्रों क्रीमिया और आजोव सागर और काला सागर के जल क्षेत्र में 179 यूक्रेनी ड्रोनों को रोकने की सूचना दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। मंत्रालय ने कहा कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 घायल हो गए थे। पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों के बाद अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय

समुदाय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में हस्ताक्षरित वाणिज्य दूत संपर्क समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी सूचियों का आदान प्रदान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। उन्होंने भारत की महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसमें भारत को वर्ष 2047 तक 25 से 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। ये वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत नए बदलाव 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब ₹2,500 होगी। 60 पृष्ठों वाला साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब ₹3,500 निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत ये ₹6,000 होगी। 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन साधारण पासपोर्ट जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों के कल से शुरू होने वाले 9 दिवसीय दौरे के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह दौरा ICCR और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की संयुक्त पहल है। इसका आयोजन ICCR के छात्र आगंतुक कार्यक्रम 2026-27 के तहत किया गया है। प्रतिनिधिमंडल भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों में अकादमिक और साहित्यिक आदान प्रदान के एक कार्यक्रम में भाग लेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंदर कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल शामिल होंगी। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने 1 सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख उफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना।

0: इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access controlled corridor.

0: कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मनोज जी।
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज ओवर 0.5%, सेंसेक्स गेन्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,000। GST collection surge almost 14% to over 1,94,000 crore rupees in June this year, and global crude oil prices decline.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई खरीदारी, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लाभ में रहे। सेंसेक्स लगभग 450 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। देश में इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह लगभग 14% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी।
2: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any फाइनेंशियल डिसीजन।
0: और अब शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से, जहां आज खरीदारी तेज रही और पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साथ ही निफ्टी सभी प्रमुख सूचकांक लगभग 0.6% लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़त के साथ 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स 100 में 0.3% से अधिक की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी लगभग 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ।
2: Benchmark domestic equity indices ended 0.6% higher today, snapping a two-session losing streak. Sensex rose by 444 points to close at 76,923. Nifty also gained 140 points to settle at 24,006. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index added over 0.3% and the small-cap 100 index climbed around 0.4%. Earlier, markets opened marginally higher. Both the stock market indices extended their upward momentum throughout the session, supported by softer crude oil prices and buying across specific sectors.
0: सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में अव्वल रही कंपनी एटर्नल, जिसके शेयरों में 5.7% की वृद्धि हुई। एशियन पेंट्स में 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3% ऊपर उठकर बंद हुए। उधर बिकवाली के दबाव में एचसीएल टेक के शेयर लगभग 3.5% लुढ़क गए। उधर टेक महिंद्रा में लगभग 3.1% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 2.5% से अधिक का नुकसान देखा गया।
2: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 25 sectors ended in positive zone among the key gainers. Realty climbed 3.6%, FMCG rose 1.8% and services added over 1.3%. In contrast, focused IT fell 2.5%, IT lost 1.9% and metal slipped 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,276 companies advanced, 1,995 companies declined and 176 companies remain unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 57 पैसे कमजोर हुआ, 95.24 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.37 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में आज थोड़ी सी तेजी देखी गई है, मूड थोड़ा सा बदल गया है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बाजार पर?
1: मनोज जी, देखिए भारतीय शेयर बाजार एक बहुत ही मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहा है, क्योंकि और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक इसकी बाजार की स्ट्रेंथ रहे हैं, जैसे आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स थे वो अभी तक इस बाजार की हम कहेंगे कि एक नींव रहे थे, लेकिन

0: लेकिन वहां पर हम काफी गिरावट देख रहे हैं। काफी आज के दिन भी जबकि बाजारों में अच्छी तेजी थी, हमने आईटी के शेयर्स में काफी गिरावट देखी और वहां पर काफी निवेश है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी, इंस्टीट्यूशंस का भी, और आईटी क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। दूसरे तरफ देखें तो जो कंज्यूमर कंपनीज एफएमसीजी कंपनीज में हम पिछले काफी दिनों से गिरावट देखते आ रहे थे, और यूजुअली हम एफएमसीजी कंपनीज को इकोनॉमी का एक दर्पण मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर एफएमसीजी कंजम्पशन कम है तो उसका असर, नेगेटिव असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। वहां पर हमने आज तेजी देखी जो एक पॉजिटिव साइन है, यानी वो पॉइंट कर रहा है कि आने वाले समय में शायद कंजम्पशन यहां बेहतर हो, जो हम नेगेटिव इफेक्ट देख रहे थे मिडल ईस्ट वॉर के, शायद वो इफेक्ट अब कम होंगे। कुछ हमने कमी देखी है, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज में कमी आई है, वहां पर थोड़ी गिरावट आई है, तो कंजम्पशन बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आपकी बाजार जो है एक मिले जुले दौर से गुजर रहा है। ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। हमने देखा जो इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आया, कोर सेक्टर ग्रोथ का डेटा आया, वो उम्मीद से बेहतर था, क्योंकि पिछले महीना अगर आप देखें जून का काफी मुश्किल महीना था, क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट बहुत था, सप्लाई चेन्स काफी डिसरप्टेड थी। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रुख है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय एक पॉइंटर है कि आने वाले समय में जैसे थोड़ी और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होंगी तो बाजार और बेहतर हो सकता है।
1: पुनीत, एफएमसीजी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट रोज 1.8% टुडे। अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड वेयर द हाइट ऑफ द समर सीजन। देयर इज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन ऑफ ड्राउट बिकॉज 43% less rainfall has been predicted by IMD. How do you see all of that playing into, you know, your food and beverage consumption and really the pricing of FMCG stocks, because they seem to adjust quite well?
0: So Arjun, interestingly, FMCG sector, like I said, is a very important sector of the economy, because it not only concerns large companies, it concerns consumption by people at large, and it gives us some kind of an idea what is the trend in the economy. Now FMCG sector is going through some kind of a turmoil, because what we saw was some pullback in consumption lately. At the same time, we saw prices going up because the input prices, the raw material prices, which are commodities, they really shot up in the last 2-3 months. Fortunately, today we saw that there was a pullback in most commodity prices. You would see that even commodity stocks, a lot of them pulled back today. So probably the market is reading that going forward, prices in commodities and therefore the input prices for FMCG companies will come down and the profitability will rise. Yes, there are concerns about consumption because of lack of rainfalls and the expectations of a shortfall in monsoon rains this year. That is there. I don't think we can wish that away. That is, we're going to deal with it. Government is trying to, you know, bring in measures which will improve the situation. But I think that challenge being there, we will see margins improve because of fall in prices for inputs.
2: Puneet ji, aapne charcha ki IT sector ki aur kaha ki wahan par sthiti उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यहां पर क्या समझा जाए कि हमारी आईटी सेक्टर जो अंतरराष्ट्रीय जगत में परिवर्तन चल रहा है वहां खरा उतरने में पीछे रह रही है, या ढांचागत समस्या आ रही है हमारी आईटी सेक्टर में सेवाओं को लेकर, या कह लें जो नए प्रोडक्ट उनके हैं उनको लेकर?
0: जी देखिए, सच बात तो यह है कि जो अंतर्राष्ट्र कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हो रहा है उससे जो काम करने का तरीका बदल रहा है पर्टिकुलरली फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है इस सेक्टर के लिए। आज ही एक बहुत प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी टॉप लाइन ग्रोथ की, उसको काफी मेजरली कट किया, उसका नेगेटिव असर सारी इंडस्ट्री पर आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स अपने पिछले 10 साल के सबसे नीचे स्तर पर चल रहे हैं, जबकि अच्छी कंपनीज हैं, काफी प्रॉफिट्स हैं वहां पर और बहुत बड़े पैमाने पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 वर्ष ये काफी डिफिकल्ट रहेंगे इस सेक्टर के लिए। उसके बाद जो नए आयाम होंगे, नए डायमेंशन होंगे, किस प्रकार से ये देखिए, डिजिटल दुनिया तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, तो इंडियन कंपनीज भी अडेप्ट करेंगी, पर शायद अभी मार्केट्स को मैं कहूंगा डाउट है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगी, कौन सी कंपनीज ग्रो करेंगी, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस पूरे माहौल में, अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसमें जो आईटी क्षेत्र

0: जो शेयर्स हैं उसमें हम कुछ गिरावट देख रहे हैं.
1: पुनीत, लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज डिपेंड अपॉन आउटसोर्सिंग, ऑफशोर आउटसोर्सिंग फ्रॉम यूएस कंपनीज हु आर नाउ डिपेंडेंट अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सर्विस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स बीइंग created as a result of it. And we've seen from the earning results of bellwether IT companies in India that a lot of their AI income has gone up. So how do you see IT companies adjusting to this? Because it's not necessarily, it's high skill, but it's a lot of jobless growth as well. Is that really what is hitting the IT sector now?
0: So jobs vis-a-vis

0: for the U.S. economy right now? Because if you look at even their the dollar valuation, it is at 101 right now. Petrodollars, the lifting of sanctions has led to the another demand for dollars to pay for energy imports. So how do you see the U.S. economy right now?
1: So Arjun, surprisingly, despite all apprehensions about U.S. economy, the U.S. economy seems to be doing very well. The economy is already expanded to $40 trillion, which is huge. And on top of it, you have a strong dollar there. Despite the fact that interest rates went up, we did not see a decline in GDP growth, and no signs of recession there. So clearly, conventional economics has been thrown out of the window in US for the time being. When you look at the technology sector like NASDAQ, you will find that it is just a segment of the technology sector which is really doing well in America. Software services companies in US also, if you look at the large ones like Accenture and others, and Capgemini, etc., they're also doing badly. In fact, the valuations have gone down even further. So clearly, there also we find some kind of segmentation in the way IT business is growing. But headline numbers are very good in US.
2: आपने बड़ी रोचक बात कही कि पारंपरिक अर्थशास्त्र के नियम धता बताते अमरीकी अर्थव्यवस्था फिलहाल दिख रही है. अमरीकी शेयर बाजार में धमाल, यानी अमरीका अमीर हुआ, समृद्धि के शिखर पर पहुंचा, तो उसके प्रभाव से दुनिया भर में थोड़ी सी ऊपर आने की दिशा देखी जाती थी. अभी का समृद्ध होता अमरीका क्या दर्शा रहा, अलग थलग अमरीका टापू या दुनिया भर में समृद्धि बढ़ने के आसार?
1: तो मनोज जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, और ये सब लोग इस बात को लेकर हैरान परेशान है. मैं कहूंगा कि जो अमेरिकन, पहले ये होता था अमेरिका में यदि शेयर बढ़ते थे, पैसा बनता था, प्रोस्पेरिटी आती थी, तो पूरे विश्व में छोटी बड़ी सभी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता था. अब हम देख रहे हैं कि उसका सिलेक्टिव फायदा हो रहा है. कुछ एरियाज हैं, अगर हम एशिया में देखें तो भारतीय बाजारों में गिरावट रही, एफआईआई की सेलिंग थी, और वहीं पर कोरिया, जापान, ताइवान, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे हमने तेजियां देखी और वहां पर शेयर मार्केट भी ऊपर गई. तो क्लियरली ये जो इम्पैक्ट है अमेरिकन अर्थव्यवस्था का, वो सिमिलर, एक बराबर नहीं है सबके लिए. और शायद इसका कारण यह है कि जो एक स्क्यूड पॉलिसीज है अमेरिका की, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, पॉलिटिकल पॉलिसीज जो है, मुझे लगता है उसका असर है ये, कि ये पूरे अर्थ जो अर्थशास्त्र के नियम है रीराइट किए जा रहे हैं.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लौटते हैं स्वदेश. वस्तु और सेवा कर लागू हुए 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं, यानी 9 वर्षों से जो एक नई प्रथा शुरू हुई, वह किस दिशा में हमें लिए जा रही है, उसके आंकड़े गवाह हैं. और जून के आंकड़े इस वर्ष के कह रहे हैं कि जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. यह पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह कहा गया कि जून में घरेलू जीएसटी संग्रह 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है. इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि आयात पर जीएसटी संग्रह 34.6% बढ़ा, 60,038 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. कुल मिलाकर जीएसटी की दिशा और देश की आर्थिक दशा किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं समझना चाहेंगे, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, यहां भी मैं कहूंगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफी डिफिकल्ट महीना है, महंगाई की दर बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम होने की आशंका थी, बारिश नहीं हो रही थी. ये सब चिंताओं के बीच में हमको जीएसटी जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो अच्छा आता है. वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही होगी. तो ये काफी एक अनएक्सपेक्टेड नंबर हैं. हालांकि इसमें काफी बड़ा योगदान इंपोर्ट के नंबर्स का है, अगर आप देखें जो हमने, यानी ज्यादा आयात हम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इंस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे, जो रुपी पे है, उस पे प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है. कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि वो इस दौरान भी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है, स्ट्रांग रखा है. और कंजम्पशन जो है, क्योंकि जीएसटी नंबर सीधे कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भारत में अभी भी अच्छी चल रही है. ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, बट दैट इज ट्रू.
0: द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन 2025. वी सॉ अ स्पाइक इन ऑटो सेल्स. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन 2026?
1: सो आई थिंक दोज रिफॉर्म्स आर प्लेइंग आउट स्टिल. सो वी हैव सीन अ रीबाउंड इन ऑटो सेल्स लाइक यू मेंशन, व्हिच वाज राइट गुड्स. नाउ वी आर सीइंग सम स्टेबिलिटी इन एफएमसीजी एंड कंजम्पशन आइटम्स. सो माय गेस इज दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी शुड रियली हेल्प नॉट ओनली कंज्यूमर्स, इट शुड help producers also, the companies which pay GST to government.

0: Let's now move on to the energy market. Crude oil. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 0.9% down at $72.30 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% down at $69.03 per barrel. When reports last came in very briefly, despite the traffic that we're seeing through the Strait of Hormuz, there is also news trickling in of fresh attacks. Is any of this true?
1: So there may be some random attacks happening in Hormuz, but I guess the supply of oil from the Gulf has started in right earnest. In fact, I read the news that Saudi Aramco has already started selling oil on a spot basis, and about 6 million barrels thereby selling. So my guess is that supply chains have been restored rather quickly in the Gulf.
0: Let's move on to the bullion market now. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.5% up at 1,43,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,28,550 rupees per kilogram a short while ago.
2: आइए आपको लिए चले हैं MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार की जाने तक अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 0.5% बढ़कर 1,43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था जबकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी थोड़ी सी कमजोर होकर 2,28,421 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी यहां पर पुनीत जी सोने और चांदी के भाव अब यहां से कहां जाते दिख रहे हैं क्योंकि एक और कई देशों में जो केंद्रीय बैंक है उनकी ओर से खरीदारी भी चल रही है सोने के भाव नीचे भी आ रहे हैं तो आगे का रुख क्या लग रहा
1: है मनोज जी देखिए अभी फिलहाल जो प्रेशियस मेटल्स हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट डॉलर इंडेक्स से आ रहा है और जैसे आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है लगातार 101 पहुंच गया है तो हमने सोने और चांदी में कमी देखी है मेरा मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले कुछ समय तक थोड़ा कमजोरी रहेगी प्रेशियस मेटल्स में और शायद फिर कंसोलिडेशन होकर अगले 2 या 3 महीनों बाद शायद हम थोड़ी स्टेबिलिटी देखें मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि यहां से थोड़ी कमजोरी अभी और हम देख सकते हैं इन इन प्रेशियस मेटल्स
0: And what's the lifting of sanctions? Is that playing a role in the stability in prices?
1: Definitely. That is also one of the reasons why commodity prices across the world, if you see, they have fallen and therefore gold and silver are also under pressure.
2: बस यहीं पर पुनीत जी श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
1: धन्यवाद मनोज जी.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था।

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही काफी है। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। कार्यालय के अनुसार करीब 10 लाख गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 13,000 से अधिक यूथ बूथ स्तर अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करेंगे। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the cabinet has also approved the construction of 117.7 km long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VB G. Ramji Act 2025 for all states and UTs. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described yesterday as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is

0: நேர்களை எஃப்எம் கோல் வழங்கிய இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியினை கேட்டீர்கள். அடுத்து சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये

0: कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। सीबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं और सरकारी एजेंसियों के नाम पर आने वाली धोखाधड़ी वाली कॉल्स से सतर्क रहें। श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालताल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत और इंग्लैंड का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बाद में तेज बारिश होने के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर पाया, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decision yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said that the cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, Viksit Bharat Gram G Act 2025, has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all the states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described yesterday as an unprecedented day for rural India. Prime Minister Jitan Sanai Takaichi arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of the Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit today with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanai Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Government yesterday issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India.

0: நினைவில் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்றது. சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में

0: बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हेलीकॉप्टर परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक खराब मौसम और दूरदराज क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये पहल हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से आपदा राहत, एयर एम्बुलेंस, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इससे पहले इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Viksit Bharat Gramji Act 2025, has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all the states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described yesterday as an unprecedented day for rural India. Prime Minister Rajitant Sanait Takaichi arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit today with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi said he's looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sunaita Kaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Government yesterday issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said that the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta to not roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said that once

நிலவுமே.

கம் சுதா, ஏன் சைலண்டா நிக்கிற? கம் ஆன், நீ ஆடு.

0: நெஞ்சம் மறப்பதிலே நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை இதயக்கனி, மேல்நாட்டு மருமகள், தேன் சிந்துதேவானம் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்களை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल फोर्थ 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू

भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इस मुकाबले में सेनेगल ने बेल्जियम पर 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேயர்கள், இதுவரை இனியராகும் நிகழ்ச்சியில் உஸ்தாத் ரஷீத் கான் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब से कुछ ही देर में पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 में दोनों टीमों का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से सुबह 5:30 बजे कैलिफोर्निया में होगा। अंतिम 16

0: செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 250 न्यूयॉर्क और सेल बॉस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 25 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए थे, जिससे राजधानी काराकास सहित कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

குலமகளாக வரும் நினைவோ.